0: नहीं ले माँ उसको मैंने वो मुझे संगे चुप के वेल वालों तो नहीं उनका से ना इधर उनका से नोट सा ये तो वेली चीज़
1: के लाइक अमा इंस्ट्रक्शन अमा रूल्स ये वेरी सिंपल 60 सेकंड्स यू कैन आंसर एस मेनी क्वेश्चंस एस यू कैन डिपेंडिंग उस फास्ट कांग अगनन एंड देन ईच क्वेश्चन ओ इट्स ऑल राइट इट्स वो एक्सासा एंड देन उंगा वाज़ा देन इफ वो पुअर आईसा